0: भेजी पे मैं और वो पापा से ना होने यार
1: You put me back on that. Let it be cool and play.
2: Better.